0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 6 বজাত হিন্দী আৰু 6:05ৰ পৰা ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
2: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग 2 सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे

0: किसी काम से यहाँ आया था, रात को 12 बजे की गाड़ी से दिल्ली जा रहा हूँ। और तुम?
1: जी, कमीज के बटन टूटे हैं।
0: बटन क्या, सब कुछ ही टूट गया।
1: बटन लगाने वाला कोई नहीं।
0: एक थी लेकिन ऐसे गई कि लौट कर ही नहीं आई।
1: आपने चाहे नहीं हो, नहीं तो जरूर आ जाती।
0: चाह तो बहुत था।
2: মধুবন অনুষ্ঠানটি আজিলৈ ইমানতে সামৰা হ'ল।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
2: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज का

0: कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
1: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
1: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
0: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
1: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
2: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
3: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेट लिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
0: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब IT नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमरीका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Government to introduce Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha today. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges all MPs to participate in discussion on exam reform bill. Prime Minister Narendra Modi announces formation of high-powered task force led by technology expert Nandan Nilekani. Prime Minister urges young people to strengthen their connection with India's border villages, describes developed villages as foundation of Viksit Bharat. IMD forecasts very heavy rainfall in Odisha and Chhattisgarh today. And India's weightlifting queen Meerabai Chanu wins third successive Commonwealth Games gold medal in women's 48kg category. Rishikant Singh bags silver in men's 60kg class. And now the news in detail. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has appealed all members of Parliament to participate in the discussion on the exam reform bill. In a social media post, Mr. Rijiju said, after listening to the voice of the young generation and the historic decisions taken by Prime Minister Narendra Modi for the future of students, he appeals all MPs to participate in the discussion today. We have a report.
6: The bill has strong penal provisions to deal with any case of paper leaks. According to the listed agenda of Lok Sabha, Union Minister Jitendra Singh will introduce the bill in the House. The bill introduces 7 key amendments designed to plug enforcement loopholes, establish dedicated judicial mechanisms, and accelerate criminal trials. It also seeks to significantly overhaul the 2024 framework by instituting strict time frame for both investigations and judicial proceedings. State governments and Union Territory Administrations will be empowered to designate courts of sessions as special fast-track courts dedicated exclusively to trying offences under the Act. According to the provisions of the bill, proceedings in special fast-track courts must be conducted on a day-to-day basis, with trials mandated to conclude within 3 months from the date the charge sheet is filed. Komudi Parekh, Akashvani News, Delhi.
5: Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-power task force on examination reforms, which will be led by renowned technology expert Nandan Nilekani. In a video message, he said the task force will focus on examination reforms and based on its report, steps will be taken as soon as possible to ensure the credibility of the upcoming examinations. He said that the country's examination system must be trustworthy, transparent, and leverage technology to the maximum extent. The task force will also consist of former IB Director Tapan Dekar, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti, besides former Education Secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. The Prime Minister added that the government is also moving forward towards introducing a new law in the Parliament today with stringent legal provisions regarding examinations.
7: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
5: Prime Minister Narendra Modi has urged young people to strengthen their connection with India's border villages, addressing the participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing. Mr. Modi described developed villages as the foundation of a Viksit Bharat. Prime Minister lauded the growing role of youth in nation building through the Mera Yuva Bharat My Bharat platform. The Prime Minister said the youth of the country are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Mr. Modi said when the energy of youth is channeled towards addressing national challenges and finding solutions, the future of the country becomes brighter. He added that when young people connect with grassroots reality,

0: ভয় নকৰো নকৰো কাকো নিজ হাতে ৰান্ধো খাও দুখতে থাকো
1: মই ভয় না

0: আলাপ অনুরাগ। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু শাখাত এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি শনিবাৰে নিশা 9:30 বজাত প্ৰচাৰ হৈ আছে আলাপ অনুৰাগ। অসমৰ বৰেণ্য শিল্পীসকলৰ কৰ্মজীৱনৰ আধাৰত ৰচিত এই ধাৰাবাহিক প্ৰামাণ্য অলেখ্যালানীৰ ৰচনা আৰু প্ৰযোজনা অজয় কুমাৰ
1: বৰাৰ। বিজ্ঞাপন দিয়ক অগণিত শ্ৰোতাৰ কাষ চাপক। আকাশবাণীত বিজ্ঞাপন দিয়ক অগণিত শ্ৰোতাৰ কাষ চাপক।
2: Our voice gets you heard everywhere.
1: বিজ্ঞাপন জনসাধাৰণক সজাগ কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰাবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰটি হৈছে
2: 6900453528।
1: আকাশবাণী গুৱাহাটী, সৰ্বক্ষণ সৰ্বত্ৰ আপোনাৰ সৈতে।
0: আলাপ অনুৰাগ। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু শাখাত এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি শনিবাৰে নিশা 9:30 বজাত প্ৰচাৰ হৈ আছে আলাপ অনুৰাগ। অসমৰ বৰেণ্য শিল্পীসকলৰ কৰ্মজীৱনৰ আধাৰত ৰচিত এই ধাৰাবাহিক প্ৰামাণ্য অলেখ্যালানীৰ ৰচনা আৰু প্ৰযোজনা অজয় কুমাৰ বৰাৰ।
3: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 12:00 বজাত হিন্দীত আৰু 12:05 মিনিটৰ পৰা ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों मीराबाई चानू, चानम्बम ऋषिकांत सिंह, राजा मुथु पांडी और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को बधाई दी।
5: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुथु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
4: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य मुद्दे नहीं उठाए जा सकते।
5: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
4: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत इस विषय पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड के प्रावधान वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकर्णी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यबल में पूर्व सूचना और शिक्षा निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलेंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament have been adjourned till 12 noon following opposition protest over alleged police action during students' protest over the NET issue. When the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m, Lok Sabha Speaker Om Birla congratulated India's star weightlifters Mirabai Chanu, Chalambam Rishikanta Singh, Raja Muthupandi and para power lifter Chandu Kumar on winning medals at the 23rd Commonwealth Games in Glasgow, Scotland. When the Speaker tried to take up the question hour, the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla warned that he will be forced to take action against those members who are attempting to undermine the traditions and decorum of the House. In the Rajya Sabha, the scene was no different. When the House assembled to begin its proceedings at 11 a.m, Union Ministers laid papers on the table. Amid the uproar by the opposition members, the House was adjourned till 12 noon. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Supreme Court today agreed to hear tomorrow a batch of pleas alleging excessive use of police force against students protesting over the issue of examination paper leaks. A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justices Jayamala Bagchi and V. Mohana also agreed to take up a separate plea filed by a few family members of those police personnel who were attacked during the protest, along with other listed petitions. Meanwhile, Chief Justice Surya Kant today observed that the right to peaceful and lawful protest is constitutionally protected. Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the centre, said he will assist the court. Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-power task force on examination reforms, which will be led by renowned technology expert Nandan Nilekani. In a video message, he said the task force will focus on examination reforms, and based on its report, steps will be taken as soon as possible to ensure the credibility of upcoming examinations. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. In Nagaland, the Indian Air Force IAF continued its aerial humanitarian operations, evacuating stranded passengers from different parts of the state following widespread disruption of road connectivity caused by the ongoing monsoon-related incidents. Two Indian Air Force helicopters were deployed to the EAC headquarters in Namsang Circle under Longleng District. They successfully evacuated a total of 42 stranded passengers. Earlier, on the 23rd and 24th of July, the IAF had evacuated a total of 148 stranded passengers. The nation is paying tribute to former President and renowned scientist Dr. APJ Abdul Kalam on his death anniversary today. He played a crucial role in India's space and missile development programs. Dr. Abdul Kalam is also known as the Missile Man of India. He died on this day in 2015. News just in, the government has introduced the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha. India's weightlifting queen Mirabai Chanu has won the first gold medal for the country at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow. She dominated the women's 48-kilogram weightlifting event with a record-breaking total lift of 190 kilograms. India's medal tally now stands at 4 with 1 gold, 2 silver and 1 bronze. Para power lifter Chandu Kumar had opened the country's account with a bronze medal in the men's heavyweight event on the opening day of the competition. The Intermeteorological Department IMD has forecast very heavy rainfall with extremely heavy rainfall at isolated places over Odisha and Chhattisgarh today. IMD said Odisha will experience widespread to extremely heavy rainfall under the influence of a depression over the northwest bay of Bengal. And with that, we end this news bulletin.
7: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अभी दिन के 12:10 हुए हैं। अब हम आरंभ करते हैं सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण।

सैनिक भाइयों, मैं पूनम बरुआ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के प्रसारण में। हम अब से कुछ ही पलों में शुरू करेंगे आज के सुरीले गीतों का सुहाना सफर, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही पलों में सुनेंगे पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत, 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम तराना।

1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, समाचार के बाद 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत माला, 1:40 पर कार्यक्रम होगा वतन के तराने।

दिन के 2 बजे से बारी बारी से रिले किया जाएगा अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। समाचार के बाद 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम चयनिका। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी। प्रस्तुत है पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए मशीन फिल्म से यसी दिशाए के और शाशा तिरुपति की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी फिल्म से अदिति बैनर्जी और सिद्धार्थ बसरूर की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फैनी खान फिल्म से, आवाज है सुनिधि चौहान की।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाजों में बॉडीगार्ड फिल्म से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे वजीर फिल्म से ये गीत, आवाजें है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, जिसके बोल लिखे हैं विदु विनोद चोपड़ा ने और संगीत से सजाया है शांतनु मोइत्रा ने।

हमारे अगले कार्यक्रम तराना की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल मंगलवार है और रोजाना की तरह कल के प्रसारण का आरंभ होगा 12:10 पर। पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत का वक्त होगा 12:12 पर। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई।

1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, समाचार के बाद 1:10 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत, 1:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

दिन के 2 बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। समाचार के बाद 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे कल के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गुंजन। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, हम पेश कर रहे हैं कार्यक्रम तराना। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए लौट आओ एल्बम से अहमद जहांजीव की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराना। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए रोमांटिका एल्बम से हर्षदीप की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराना। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए सोनू निगम की आवाज में, चांद की डोली एल्बम से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराना। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मेरे पिया एल्बम से सोनू निगम और सपना मुखर्जी की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराना। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए अक्सर एल्बम से शान की आवाज में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआर फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, आपको बता दें कि अब से लेकर 1:40 तक आप हमारा ये प्रसारण सुन सकते हैं आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी 529.1 मीटर पर। पेश है कार्यक्रम गीत माला। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए रिक्शा वाला फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का पहला गीत सुना आपने रिक्शावाला फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में रखवाला फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत माला। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए राम तेरी गंगा मैली फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

0: सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत माला। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए यारी जिंदाबाद फिल्म से आशा भोसले की आवाज में।
1: कुर्बान।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत माला। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में, यकीन फिल्म से।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत माला। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए तवायफ फिल्म से महेंद्र कपूर की आवाज में।

0: सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए तांगे वाला फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में।
1: आओ, आओ।

0: क्या झूठ बात है?
1: नहीं
0: तो बद फिर देखो भालो, जवानी के गुण गालो।
1: तो दीवाने
0: आए,
1: अरे एक तमाचा
0: लाए।
1: देखो तो कभी दिल में ये बोले ना के गए, कहो क्या झूठ बात है?
0: नहीं
1: तो बद

0: झूठ क्या झूठ की बात है
1: नहीं
0: तो बस फिर से उठा लो जवानी के गुण गा लो।
2: सैनिक भाइयों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत माला। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए सिलसिला फिल्म से लता मंगेशकर किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में।

इसी गीत के साथ आज का गीतमाला कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सैनिक भाइयों, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे आकाशवाणी गुवाहाटी के प्रागज्योतिषपुर से, मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, और आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से 529.1 मीटर पर।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन के तराने। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए हकीकत फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वतन के तराने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, मुझे जीने दो फिल्म से मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वतन के तराने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए शहीद फिल्म से मुकेश, राजेंद्र मेहता और महेंद्र कपूर की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वतन के तराने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, बरखा बहार फिल्म से महेंद्र कपूर और मनहर की आवाजों में।

0: Assembly elections are currently underway in POJK. News just in, Rajya Sabha has been adjourned till 3 p.m. and Lok Sabha has been adjourned till 5 p.m. Today is the death anniversary of former President and renowned scientist Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam, popularly known as the Missile Man of India. Dr. Kalam is remembered as one of the greatest teachers ever. He played a pivotal role in India's defence and space research development. More from our correspondent.
1: Born on 15th October 1931 at Rameswaram in Tamil Nadu, Dr. Kalam specialized in aeronautical engineering from Madras Institute of Technology. He made significant contribution as project director to develop India's first indigenous satellite launch vehicle, which successfully injected the Rohini satellite in the near-Earth orbit in July 1980 and made India an exclusive member of Space Club. The former president was also responsible for the development and operationalization of Agni and Prithvi missiles and for building indigenous capability in critical technologies through networking of multiple institutions. Dr. Kalam was one of the most distinguished scientists of the country, with the unique honor of receiving honorary doctorates from 30 universities and institutions. He has been awarded the coveted civilian awards Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and the highest civilian award Bharat Ratna. Dr. Kalam became the 11th President of India on 25th July 2002. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
0: In shooting, India's Isha Singh grabbed the gold medal in the women's 25-meter pistol event of the ISSF World Cup Rifle Pistol Shotgun in Hangzhou, China today. She upstaged Olympic medalist Manu Bhakar, who took the bronze, to complete a double podium finish for India. The 22nd Commonwealth Table Tennis Championship 2026 commenced in New Delhi today. Addressing the inaugural ceremony of the event, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said Commonwealth Table Tennis Championships are an inspiration for everyone that will serve to strengthen relations among participating countries. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government introduces Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition ruckus. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju says preventing discussion on such important issues will send wrong message to the country. Global crude oil prices plunge around 6% after United States and Iran pause military strikes. Weather Department forecast heavy to extremely heavy rainfall in parts of Odisha, Chhattisgarh and Gangetic West Bengal as deep depression forms over Bay of Bengal. Indian shooter Isha Singh clinches gold in women's 25-meter pistol event at ISSF World Cup. Manu Bhakar settles for bronze. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
3: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
2: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
5: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
2: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
5: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
2: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
6: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
2: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
7: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों, प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
2: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
8: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगा, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716 जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
9: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगतसिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
2: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉ कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
10: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
2: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे, साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का अनूठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के होंगचाओ में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
1: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
0: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की

0: दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के प्रसारण में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम चयनिका। आज के इस संगीतमय प्रस्तुति में हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने एक नए सितारे को हिंदी सिनेमा में ऐसी पहचान दिलाई कि हर कोई उसका दीवाना हो गया। जी हाँ, आज की हमारी फिल्म है कहो ना प्यार है।

कहो ना प्यार है साल 2000 में रिलीज हुई। इस फिल्म का निर्देशन किया था राकेश रोशन ने। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल। यह ऋतिक रोशन की पहली फिल्म थी और उनकी शानदार अभिनय क्षमता, दमदार नृत्य और आकर्षक व्यक्तित्व ने उन्हें रातों रात श्रेष्ठ अभिनेता बना दिया था।

फिल्म की कहानी रोहित नाम के एक साधारण मेहनती और प्रतिभाशाली युवक की है, जिसका सपना एक सफल गायक बनना है। एक संयोग से उसकी मुलाकात सोनिया से होती है, दोनों के बीच दोस्ती होती है और फिर यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। रोहित अनजाने में एक बड़े हादसा का गवाह बन जाता है। सच को छिपाने के लिए अपराधी उसकी हत्या कर देते हैं।

समय बीतता है और सोनिया अपने भाई के पास न्यूजीलैंड से चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात राज से होती है, जो हूबहू रोहित जैसा दिखता है। पहले तो ये केवल एक संयोग लगता है, लेकिन जब राज को पूरी सच्चाई का पता चलता है तो वो भारत आकर रोहित के हत्यारों को बेनकाब करने का फैसला करता है।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर सुन रहे सभी श्रोताओं को अनुराधा का नमस्कार। मित्रों, कुछ रोग ऐसे हैं जिससे प्रभावित कुछ लोग ही होते थे, लेकिन जैसे जैसे रहन सहन खान पान बदला, वो बीमारियां आम हो गई हैं जिनका शिकार कुछ लोग ही हुआ करते थे। एक ऐसा ही रोग है कैंसर। आज है वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे, तो आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुलदीप ठाकुर जी, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी है कोई सवाल तो आप हमें कॉल करें। स्टूडियो के नंबर हैं 0112342108 2। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। तो आप नंबर डायल करिए। इधर हम स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है उससे जुड़ा मेरा पहला सवाल है कि क्यों होता है हेड और नेक कैंसर? क्या वजह है कि हेड और नेक जो कैंसर है उसकी तादाद बढ़ती जा रही है?
2: हमारे देश में हर साल जो नए कैंसर डायग्नोस्ड होते हैं उसमें से तकरीबन 22% जो नए कैंसर है वो हेड एंड नेक कैंसर होते हैं।
1: जी।
2: तो काफी सारे हमारे कलीग्स हैं, हमारे सहपाठी लोग हैं, वो सब ये हमें पूछते हैं कि हेड एंड नेक कैंसर में आप कौन से कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं। तो हेड एंड नेक कैंसर से हमारा जो एक सिंपल वे में जो मतलब है वो है ईएनटी कैंसर।
1: जी।
2: तो ईएनटी कैंसर हमारे देश में इनफैक्ट मेल्स में सबसे कॉमन कैंसर है, डिपेंड ओरल कैविटी कैंसर। और जो 95% जो ईएनटी कैंसर होते हैं
1: जी,
2: वो तकरीबन एक तो तंबाकू, वो हो सकता है स्मोकिंग की फॉर्म में हो या फिर च्यूइंग की फॉर्म में, जैसे पान मसाला, जर्दा, सुपारी, ये सब जो लोग यूज कंज्यूम करते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है अल्कोहल। सो ये दो जो अल्कोहल एंड टोबैको है, 95% जो ईएनटी कैंसर है, पर्टिकुलरली माउथ कैंसर है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
1: जी।
2: उसके अलावा माउथ कैंसर के लिए जैसे तीखे दांत है जो बार बार जीभ में लग रहे हों और उसकी वजह से जो जख्म बन रहा है जो तकरीबन 2 हफ्ते से ठीक नहीं हो रहा हो, वो भी एक इम्पोर्टेंट कारण है। एडवांस एज में जब मैक्सिमम काफी लोग डेंचर यूज करते हैं, अगर वो डेंचर प्रॉपरली फिट मुंह में नहीं हो रहा है उसकी वजह से क्रॉनिक इरिटेशन होती है
1: जी,
2: सो वो भी एक इम्पोर्टेंट कारण है पर्टिकुलरली मुंह के कैंसर में।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत आपने जो शॉर्ट में बताया वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, आगे आपसे विस्तार पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी हर श्रोताओं, हमारे जो अपने होते हैं जिनसे रात और दिन हमारे जुड़े होते हैं, हम चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें। और आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे पर। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुलदीप ठाकुर जी। आपका भी है कोई सवाल तो हम तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए नंबर है 01123421082। व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए अपना शुभ नाम।
1: मेरा नाम है मैम अमित त्यागी, सभी को मेरा प्यार भर नमस्कार।
0: जी नमस्कार अमित जी, क्या सवाल है आपका?
1: जी जी मेरा सवाल ये है कि हेड और

0: कैंसर से बचने के लिए हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए?
1: जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, जो एडवाइस है उसको फॉलो करें आप।
2: जी ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया
1: जी
2: कि हमारे जो 95% जो हेड एंड नेक कैंसर है वो प्रिवेंटेबल है, और उसका सिंपल और सिंपल और सिंपल कारण है टोबैको और एल्कोहल। अगर हम टोबैको और एल्कोहल को अपनी जिंदगी से निकाल दें, इसके लिए कोई जगह ना रखें, तो हमारे जो कैंसर है वो अपने आप उनके होने की जो चांसेस है वो ना के बराबर है। इसके साथ ही आप अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ, सबसे पहले तो डाइट इम्पोर्टेंट है
1: जी,
2: कि डाइट में फ्रेश फ्रूट्स ज्यादा लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा लें या कलरफुल वेजिटेबल्स ज्यादा लें। इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि कैंसर बनने में उसको रोक लेते हैं, कैंसर बनने को रोक लेते हैं
1: जी।
2: जो खाना है वो सिंपल खाना खाना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, जैसे होल व्हीट ग्रेन लेना चाहिए, ओट लेना चाहिए, नट्स लेने चाहिए, और दालें ज्यादा खाएं क्योंकि उनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है
1: जी।
2: और साथ में ही सफिशिएंट पानी पिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें और एक्सरसाइज करें। अगर इन सब का हम अपनी जिंदगी में पालन करते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से हेड एंड नेक कैंसर से बच सकते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम अपने खान पान को व्यवस्थित रखें, अगर वो संतुलित रहेगा तो जो हमारे अंदर कैंसर के डेवलप होते हैं बैक्टीरियाज वो कम होंगे, मतलब गुंजाइश कम हो जाएगी,
2: कम होगी
1: जी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मैसेज आया हुआ है प्रकाश जी का, दिल्ली से लिख रहे हैं कि मुंह में अगर छाले ठीक नहीं हो रहे हैं तो कैंसर की जांच करवानी चाहिए क्या, ये जानना चाहते हैं।
2: बिल्कुल, जितने भी मुंह के अर्ली स्टेज कैंसर होते हैं वो हमेशा एक छाली के रूप में ही बनते हैं, और शुरुआत जो स्टेज होती है उसमें पेशेंट को दर्द नहीं होती है। हमारे पास पेशेंट कब आता है जब उसको छाले में दर्द होने शुरू हो जाए, दैट मीन्स वो ऑलरेडी काफी एडवांस्ड है
1: जी।
2: कोई भी मुंह का छाला जो तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा रह रहा हो और जो नहीं भर रहा है, इम्प्रूव नहीं हो रहा है, उनको इमिडिएटली जो भी उनके नियरेस्ट ENT स्पेशलिस्ट है उनको दिखाना चाहिए। वो एक सिंपल ऑफिस बेस्ड जिसमें हम बैठ के हेडलाइट से देखते हैं और उसको ग्लव्ड फिंगर से फील करते हैं, तो जो कैंसर वाले छाले हैं वो फील करने में उंगली से जब हम फील करते हैं वो थोड़े हल्के से सख्त होते हैं एज कम्पेयर टू जो दूसरा नॉर्मल मुंह की चमड़ी होती है। और उसकी जो हम बायोप्सी लेते हैं वो एक सिंपल ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर है, इसको 2 मिनट लगते हैं, तो बायोप्सी से हमें 100% ये पता चल जाता है कि ये कैंसर है या नॉन कैंसर है
1: जी। तो बहुत सारी यहाँ पे चर्चा चल रही है श्रोताओं, आपको जागरूक करने के लिए, अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी कोई शिकायत है तो आप हमसे जुड़ चुके हैं। फिलहाल हमारे साथ विशाल जी हैं मेरठ से, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी। जी विशाल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
3: यस मैम, नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार
3: डॉक्टर साहब को, नमस्कार
1: जी डॉक्टर साहब।
3: मैम आज बहुत दिन बाद कॉल लगी है।
1: अच्छा देखिए, सभी श्रोता लाइन पर होते हैं ना, तो ये सौभाग्य की बात होती है कि किसका कॉल लग जाए। बताइए क्या सवाल है।
3: हाँ जी मैम, मेरे जो है वो हुआ था, मतलब ब्रेन स्ट्रोक हुआ था मेरे, तो उससे मैं मतलब लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गया पैर और हाथ।
1: ओहो जी जी जी।
3: और उसमें जो है मेरे ब्रेन स्ट्रोक, मतलब कि हाथ भी काम नहीं कर रहा प्रॉपर वे से, और पैर भी तिरछा पड़ता है
1: जी।
3: सुन पा रहे हो डॉक्टर साहब?
1: जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, बताएं आप।
2: जी बताएं जी।
3: हाँ जी, तो सर अब जो है उसी बीच में तो मतलब दौरे वोरे से पड़े थे जब मेरा ये ब्रेन स्ट्रोक हुआ था
1: जी,
3: तो उससे ही मतलब फिर ऑपरेशन हुआ मेरा। वो उन्होंने सिर की हड्डी निकाल के मेरी वो वहीं रख ली, सर्वोदय अस्पताल में हुआ था मेरा ऑपरेशन
1: जी,
3: हिसार में, तो वहीं पे उन्होंने वो हड्डी वड्डी रख ली सिर की, और फिर ये लगी मेरे में 2 महीने बाद लगाई, मतलब अक्टूबर में हुआ था 2021 में। और उसके बाद मैं मतलब डॉक्टर साहब मेरी जो है आंखों की रोशनी भी चली गई, अब मुझे दिख नहीं पाता कुछ भी
1: जी। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे?
2: जी आई थिंक देखो, जो भी डॉक्टर ने इलाज किया होगा वो तो इनकी जो भी स्थिति भी उसको देख के किया होगा, जो भी इनके लिए अच्छा था। ये जरूर है कि ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं, हड्डी निकाल देते हैं ताकि जो दिमाग है उसमें जब सूजिश आए उसको एक्सपेंड करने के लिए रास्ता मिल जाए, तो इसलिए वो ऑपरेशन करना जरूरी रहता है। अभी जो आपकी आंख की रोशनी गई है इसके लिए आपको अपने जो आपके न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन है उनको इमीडिएटली कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें काफी ज्यादा लंबे टाइम तक आप ऐसे रखोगे फिर वो ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन जो भी आपका इलाज करें उससे इमीडिएटली कंसल्ट करें।
1: जी, तो इनको आपने मार्गदर्शन दे दिया है। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, कितने प्रकार के होते हैं कैंसर?
2: देखिए, जो हम हेड एंड नेक कैंसर की बात करते हैं इसमें मुख्यतः जो हमारी कंट्री में सबसे कॉमन कैंसर है वो है मुंह का कैंसर। तकरीबन आप ये कह सकते हो पुरुषों में तकरीबन हर लगभग 20% जो नए कैंसर होते हैं वो सिर्फ मुंह के कैंसर होते हैं। मुंह के कैंसर के अलावा जैसे गले का कैंसर है, थ्रोट कैंसर जिसको हम बोलते हैं, लैरिंजियल कैंसर, फिर थायराइड कैंसर, सलाइवरी ग्लैंड कैंसर जैसे पैरोटिड ट्यूमर्स होते हैं, नोज एंड साइनस कैंसर, वो सारे जो कैंसर हैं ये हेड एंड नेक रीजन में ही आते हैं। और इन सब का एक अपना एक तरीका होता है ये जो किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि अगर कोई भी, जैसे मैं आपको बताया मुंह में छाला है जो दो हफ्ते से ठीक नहीं हो रहा हूँ, सिमिलरली जैसे थ्रोट कैंसर है, थ्रोट कैंसर मोस्टली जैसे गले में कुछ फंसा हुआ है
1: जी,
2: या फिर आवाज खराब है जो तकरीबन दो हफ्ते से ज्यादा हो गया ठीक नहीं हो रही हो, या गले में दर्द हो रही है निगलते हुए स्वेलो करते हुए और वो कान में भी जा रही है, प्लस अगर किसी को कोई भी पेनलेस लंप है गले में, गांठ है जिसमें दर्द नहीं है और दो हफ्ते से ज्यादा है, उन लोगों को इमिडिएटली अपने जो भी नियरेस्ट ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास जाके कंसल्ट करना चाहिए।
1: जी, क्योंकि डॉक्टर साहब जो शुरुआती दौर होता है उसमें तो लोग समझ ही नहीं पाते किस तरह से क्या लक्षण होते हैं इसके, जो ये डायग्नोस होने के बाद स्टेज भी अचानक से बढ़ जाती है, तो क्या लक्षण होते हैं जिस समय इसको समझ के तुरंत इलाज लिया जाए?
2: सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ईएनटी कैंसर की है वो ये कि जो इनिशियल स्टेज में जब कैंसर आता है, ईएनटी नहीं बल्कि सारे शरीर के जो कैंसर है अर्ली स्टेज में उनके जो सिम्टम्स है वो ज्यादा नहीं होते हैं
1: जी,
2: इसलिए पेशेंट हमारे पास आते नहीं क्योंकि पेशेंट को ज्यादा तंग भी नहीं करते हैं। और जो खासियत ईएनटी कैंसर की है वो ये है कि जब भी हमारे पास पेशेंट को कुछ भी, जिनको जैसे मुंह में छाला ठीक नहीं हो रहा, आवाज खराब है दो हफ्ते से ठीक नहीं हो रही हो, या गले में कोई गांठ है, फेस में गांठ है, ईएनटी कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कोई बहुत बड़े टेस्ट की जरूरत नहीं होती है, जस्ट 5 मिनट का एक क्लिनिकल रिव्यू और क्लिनिकल एग्जामिनेशन प्लस लैरिंगोस्कोपी, उसी से ही ऑलमोस्ट हमें ये पता चल जाता है कि ये जो भी मैनिफेस्टेशन है ये सस्पिशियस है कि नहीं है
1: जी।
2: ईएनटी कैंसर डायग्नोस करने के लिए आपको बहुत बड़े टेस्ट की जरूरत नहीं होती है,
1: मतलब शुरुआती जो दौर है उसी समय अगर जागरूक हो जाए हमारे श्रोता तो इतनी स्थिति खराब नहीं होती है जो आगे चलकर हो जाती है। आपसे हमारे एक श्रोता बात करना चाह रहे हैं, लाइन पर है जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नाम बताएं अपना।
4: जी नमस्कार, हम पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी गौतम जी बताएं क्या सवाल है आपका?
4: मेरा पूछना है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लोग जो हैं दांत में आर्टिफिशियल दांत लगा लेते हैं
1: जी,
4: उसके बहुत सारे कारण होते होंगे, पैसा नहीं है वगैरह वगैरह, गांव में डॉक्टर बैठे हैं वो लग चिपका देते हैं
1: जी,
4: तो मैंने सुना है कि वो जो चिपकाने वाली चीज है उससे भी कैंसर होता है, कृपया इस बारे में विस्तार से बताएं कि सच है या मिथक है।
2: जी देखिए, ऐसा अभी तक हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे ये बताया गया हो कि इस पदार्थ से कैंसर होने का रिस्क रहता है, पर जैसे कि हमने पहले भी बताया कि जो डेंचर यूज करते हैं लोग, अगर वो प्रॉपरली फिट नहीं हो रहे हो और वो लूज हो, उससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर जो चमड़ी है वहां की मैकोसा है उसमें इरिटेशन होती है, तो इवेंचुअली आफ्टर यू नो तकरीबन 6-8 महीने के बाद जब वो क्रॉनिक इरिटेशन रहती है उससे कैंसर बनने का रिस्क रहता है। तो इसलिए मेरे पास जो भी मरीज जो भी एल्डरली लोग आते हैं उनको मैं ये जरूर बोलता हूँ कि अगर जो डेंचर यूज कर रहे हैं 6-8 महीने या साल बाद रेगुलरली अपने डेंटिस्ट को बोलें कि एक बार क्लोजली चेक करें उसके नीचे कोई घाव तो नहीं बन रहा है, सो उसमें कैंसर हो सकता है, बट ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि पदार्थ से, इस तरह के पदार्थ से कैंसर होता हो।
1: जी तो ये जो मिथक है वो आपने दूर कर दिया, जो भ्रम की स्थिति लोगों की होती है। और डॉक्टर साहब लगातार हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा है, हितेंद्र दास जी का है आसाम से हमारे पास, उनको कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हितेंद्र दास जी अगर आपका कोई सवाल होता तो आप हम तक जरूर पहुंचाएं। और इस तरह के बहुत सारे मैसेज हैं जिनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपका कोई सवाल है तो हम तक जरूर पहुंचाएं। डॉक्टर साहब किस तरह के कौन कौन से टेस्ट आवश्यक होते हैं कैंसर की स्थिति में?
2: देखिए जब हम, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो ईएनटी कैंसर्स हैं वो बहुत इजीली हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं जस्ट एक सिंपल 5 मिनट के एग्जामिनेशन के लिए
1: जी,
2: जब भी हमें कोई भी सस्पिशियस चीज दिखती है, तो जैसे

0: सपोज कोई गले में गांठ हो तो उसके लिए हम सबसे पहले एक सुई की जांच करते हैं जिसको हम एफएनएसी बोलते हैं, वो करते हैं क्योंकि एक बहुत बेसिक टेस्ट है, इजिली ओपीडी में हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे अगर किसी को घाव है, मुंह पे घाव है, अल्सर है या गले में छाला है तो उसकी हम बायोप्सी करते हैं जिसको हम ऑफिस बेस्ड बायोप्सी करते हैं, जो कि आजकल हम लोग मोस्टली बिना बेहोश किए सुन करके ही ओपीडी में कर पाते हैं
1: जी।
0: इसके बायोप्सी और एफएनएसी की हमारे जो समाज है उसमें काफी सारी भ्रांतियां फैली हुई है, सो मैं आपके माध्यम से ये चीज बताना चाहता हूँ। मेरे पास काफी पेशेंट ऐसे आते हैं जो हमें बोलते हैं कि बायोप्सी और एफएनएसी से कैंसर बढ़ता है और ये नहीं करना चाहिए। काफी सारे लोग इसका टीवी पे रेडियो पे प्रचार करते हैं, देखो इन्होंने बायोप्सी की इसलिए ट्यूमर फैल गया है
1: जी।
0: सो हमारे पास अभी तक ऐसे कोई भी साक्ष्य या एविडेंसेस नहीं है जिससे ये प्रूव हुआ हो कि बायोप्सी करने से या एफएनएसी करने से ट्यूमर फैलता है, बल्कि जितनी जल्दी हम बायोप्सी और एफएनएसी से डायग्नोसिस बना सकते हैं उतनी जल्दी हम उसका इलाज भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर कोई भी डॉक्टर आपको कभी भी ये एडवाइस करता है कि आप बायोप्सी करवाएं या एफएनए कराएं तो वो तुरंत इमिडिएटली करना चाहिए ताकि समय पर इलाज शुरू हो सके
1: जी। डॉक्टर साहब, ये किस तरह से तय होता है कि स्टेज कौन सी है, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत जो एक्सट्रीम की स्थिति हो जाती है अगर उस स्टेज पर डायग्नोस होता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
0: तो जब हम लोग पेशेंट को एग्जामिन करते हैं अपने ओपीडी में देखते हैं तो हमें काफी हद तक ये पता चल जाता है कि जो ट्यूमर है इसका साइज क्या है और कौन कौन सी जगह को ये इन्वॉल्व कर रहा हो, प्लस नेक में जो गांठें होती है गले में जिसको हम लिम्फ नोड बोलते हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है
1: जी।
0: तो ये मोस्टली हमें क्लिनिकली पता चल जाता है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद मोस्टली आपने देखा होगा डॉक्टर बोलते हैं या सीटी स्कैन कराओ या एमआरआई कराओ या पेट स्कैन कराओ। तो उससे हमें ये मालूम पता चलता है कि जैसे कोई भी जैसे मुंह में कोई छाला है तो हमें दिख रहा है कि छाला यहाँ पे है, लेकिन वो कितना डीप अंदर तक गया है वो हमें सीटी स्कैन या एमआरआई या पेट स्कैन के माध्यम से पता चलता है
1: जी।
0: तो मैं आपकी एक और यहाँ पे हमारे समाज में जो भ्रांति फैलाई गई है कि पेट स्कैन नहीं करना चाहिए, पेट स्कैन से ट्यूमर बढ़ता है, तो ये प्योरली एक तरह की कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही है। पेट स्कैन से हमें ये मालूम चलता है, पेट स्कैन से हम डायग्नोज नहीं करते हैं ट्यूमर, पेट स्कैन से तो हमें ये बताता है कि कहाँ पे जो सेल्स है शरीर के वो बहुत ज्यादा ग्रो करे, जैसे कैंसर सेल्स है वो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं इसलिए वो पेट स्कैन पे चमक जाते हैं
1: जी,
0: है ना। अगर ऐसे कोई और स्पॉट भी इन्फेक्शन की वजह से भी मतलब वहां पे वो ग्लो करता है तो पेट स्कैन हम इसलिए करते हैं ये देखने के लिए कि अगर कोई मुंह का ट्यूमर है वो गले में फैला है या शरीर में कहीं और जगह फैला हो, या कई बार क्या होता है कि कोई दूसरा ट्यूमर भी शरीर में कहीं पे होता है
1: जी,
0: ठीक है। तो वो डायग्नोज करने के लिए उसे हमें अल्टीमेटली ये स्टेज का पता चलता है कि जो ट्यूमर है और गले में गांठ और शरीर में कहीं और फैला, उस हिसाब से हम फर्दर स्टेजिंग करते हैं जिसको स्टेज वन से लेके हम स्टेज फोर सी तक जो है ना इसको फर्दर स्टेजिंग करते हैं। तो जो भी अर्ली स्टेज जो कैंसर्स होते हैं वो जनरली सिंगल मोडलिटी ट्रीटमेंट से हम लोग ट्रीट करते हैं या सर्जरी या रेडिएशन के माध्यम से। जो एडवांस स्टेज होते हैं जैसे स्टेज थ्री, स्टेज फोर या स्टेज फोर बी होता है उसके हम कंबाइंड मोडलिटी करते हैं जिसमें या तो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी देते हैं या सर्जरी उसके बाद कीमो और रेडिएशन देते हैं। जो स्टेज फोर सी होता है उसका मतलब है कि जो ट्यूमर है वो ऑलरेडी शरीर में कहीं और जगह फैल चुका है
1: जी,
0: तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं उसमें सिर्फ हम लोग पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं। पैलिएटिव मींस कि उनको हम ठीक नहीं कर पाते हैं, उन पेशेंट्स को उनकी जितनी जिंदगी बची होती है उसको हम कैसे बेहतर बनाएं,
1: राइट जी।
0: तो उसमें जैसे अच्छा न्यूट्रिशन, पेन मैनेजमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव करें उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, क्या सर्जरी के अलावा मेडिसिन से भी इलाज संभव होता है?
0: जो ईएनटी कैंसर होते हैं उसमें जो कीमोथेरेपी होते हैं वो ज्यादा असर नहीं करता है, सो कीमोथेरेपी हम लोग बहुत सिलेक्टेड केसेस में देते हैं। तो मोस्टली जो हेड एंड नेक कैंसर या वो सर्जरी से ठीक होते हैं या रेडिएशन ठीक होते हैं, कई बार हमें कीमोथेरेपी रेडिएशन के साथ ऐड करना पड़ता है। अदरवाइज सिर्फ कीमोथेरेपी जो है ना वो सिर्फ हम पैलिएटिव में देते हैं। पैलिएटिव में जो स्टेज फोर सी होता है जिसमें हम ठीक नहीं कर पाते हैं, जस्ट उसकी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, तो उसके लिए सिर्फ कीमोथेरेपी देते हैं जी।
1: जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद करेंगे आगे की चर्चा।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, 102.6 एफएम रेनबो पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे पर। तो आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुलदीप ठाकुर जी। यदि आपका भी है कोई सवाल तो हम तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो के नंबर है 0112342108 2, और व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर है 9868107070। तो आप नंबर डायल करिए, और बहुत सारे जो हमारे सवाल हैं हम तक आते रहते हैं आपके सवाल, और उनका जवाब हम देते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं, तो हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपका भी है कोई सवाल तो हम तक आप पहुँचा सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं।

0: जान लेते हैं उनका नाम क्या है। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: हेलो
0: जी सर, स्वागत है कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: जी मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
0: जी बताएं सर, क्या सवाल है आपका?
1: 48 वर्ष मेरी उम्र है
0: जी।
1: तो सबसे पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून सर
1: जी। मेरे दो सीधे साधे सवाल है
0: जी।
1: एक तो ना मेरी नेक में जो है वो कुष्ठ रोग की गांठ है और ये काफी पुरानी गांठ है। अब जानना मैं चाह रहा हूँ कि यंग स्टेज में जो फेस पे पिंपल्स होते हैं ना, तो उस दौरान ये गांठ जो है मेरे को नेक में आ गई थी
0: जी।
1: अब वो कुष्ठ रोग की गांठ है, मैंने जांच पड़ताल उसकी करवाई थी। अब होता ये है कि मेरे को नेक में और पीछे फोरहेड के पीछे जो है वो सिर में काफी दर्द रहता है और हैवीनेस रहती है, और खासतौर से गर्मी में बहुत प्रॉब्लम होती है।

0: साथ में सिरदर्द भी रहती है. इसके लिए आपको जो भी आपके नियरेस्ट स्पाइन सर्जन होते हैं जो रीढ़ की हड्डी को देखते हैं, आप उनको एक बार उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं. होता क्या है कि कई बार जो जो रीढ़ की हड्डी से जो नसें बाहर निकलती है वो कई बार दब जाती है, उसकी वजह से इस तरह की पेन होती है जिसमें गर्दन में दर्द होती है या सिर में भी दर्द होती है, तो आपको उचित परामर्श उनसे आप ले सकते हो. दूसरा, आपने जो बताया कि जो बोन कैंसर होते हैं उसके क्या सिम्टम्स होते हैं. बोन कैंसर जो शुरुआत स्टेज में नॉन स्पेसिफिक दर्द होती है, जिस पर्टिकुलर बोन में जो कैंसर है वहां पे दर्द होती है. इवेंचुअली लेटर स्टेज में जब वो बहुत एडवांस हो जाता है तो उस केस में फिर फ्रैक्चर होने का रिस्क रहता है, या फिर आपके दूसरे जो शरीर के दूसरे जो बोन वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट उसको बोलते हैं. उस केस में जो सेल्स होते हैं, सेल्स बनने जो है ना अफेक्ट हो जाते हैं.
1: जी जी, तो इनको जवाब मिल गया है और डॉक्टर साहब से जो परामर्श आप चाह रहे हैं वो आपको मिल चुका है. आगे हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं. जीवन शर्मा जी उज्जैन एमपी से लिख रहे हैं कि इनके गले में बार बार छाले हो जाते हैं. डॉक्टर साहब, क्या ये भी कैंसर का लक्षण है?
0: नहीं, देखो गले में छाले या तो मुंह में छाले हो सकते हैं, गले में छाले उसके कुछ और कारण है. आजकल की जो व्यस्त जिंदगी है उसमें रिफ्लक्स, जो एसिड रिफ्लक्स होता है जिसको हम लैरिंगोफेरिंजियल रिफ्लक्स बोलते हैं, वो एक कॉमन कारण रहता है गले में छाले होने का. या गले में किसी भी तरीके की अनइजीनेस या कुछ गले में फंसा हुआ महसूस करना या गले में लंप टाइप सेंसेशन फील करना, तो उसका जो एक इम्पोर्टेंट कारण है आजकल वो ये देखा गया कि रिफ्लक्स. हम लोग दिन को व्यस्त व्यस्त जिंदगी से काम करके थक के आते हैं, इमिडिएटली खाना खाते हैं और सो जाते हैं. तो ऐसे में कोशिश करें कि रात को खाना थोड़ा कम खाएं और खाना खाने के तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद सोए, ताकि जो रिफ्लक्स होने का कम चांस रहे. सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि खाने में इसके साथ छालों के साथ खाने में भी दिक्कत हो रही है या खाना निगलने में दर्द हो रही है, तो फिर आपको नियरेस्ट ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए.
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ और है लाइन पर, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है. जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में.
2: नमस्कार डॉक्टर साहब को और मैम साहब को भी.
1: जी नमस्कार सर, शुभ नाम बताएं अपना.
2: मेरा नाम लल्लू सिंह है.
1: जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मेरा ग्राम पाठक डिस्ट्रिक्ट संभल उत्तर प्रदेश.
1: अच्छा, बताइए क्या सवाल है आपका.
2: सवाल मैम जी मेरा ये है, 1990 में मेरा एक टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस
1: जी जी
2: प्रसारण जिसे हिंदी में प्रसारण कहते हैं, उसमें से बाएं तरफ वाली एक गोली ऊपर चढ़ गई थी.
1: अच्छा,
2: और तब से वो आज तक नीचे नहीं आई अपनी जगह, और मुझे तब से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. मेरा फैमिली भी कंप्लीट हो चुका है और मेरी उम्र इस समय 55 प्लस है. अभी मैंने 4 महीने पहले उसका PSIC हॉस्पिटल में नोएडा में
1: जी
2: अल्ट्रासाउंड कराया और वो टेस्ट कराया, तो डॉक्टर साहब बोले ये 9x15 सेंटीमीटर की एक गांठ बन गया है.
1: ओ, जी जी जी.
2: हाँ, मतलब 9x15 सेंटीमीटर की एक गांठ बन गई है और इसका आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा.
1: जी,
2: तो मेरी कुछ प्रॉब्लम रही, मेरी वाइफ को ज्यादा परेशानी हो गई थी. 2 जनवरी को मैंने एडमिट करा और उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है. मैं जानना चाह रहा हूँ क्या मुझे इसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए. अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ, तो मुझे इससे कोई अभी तो कोई दिक्कत नहीं है कि आगे चल के कहीं ये कैंसर वैंसर वाली इस तरह की कोई समस्या तो नहीं बनेगी.
1: जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे?
0: जी देखिए, इसके लिए अगर आपको उचित परामर्श ये होगा या जो ओपिनियन होगी तो उसके लिए आपको जनरल सर्जन से मिलना चाहिए. लेकिन हाँ, जो आपके टेस्टिस है अगर वो अब नॉर्मल पोजीशन में है, नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, तो काफी सारे साक्ष्य ऐसे हैं जिसमें ये बताया गया कि उसमें कैंसर बनने का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा हो जाता है. तो अगर उन्होंने आपको अल्ट्रासाउंड किया है, उसमें अगर उनको लग रहा है कुछ डाउट है, तो मुझे लगता है आपको सर्जरी करवाना चाहिए और अतिशीघ्र करवा लेना चाहिए.
1: जी, क्योंकि रिस्क डॉक्टर साहब जैसा जैसा इस केस में सुनने में आता है कि हम अवॉइड करते जाते हैं, उतना कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ती जाती हैं. डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि कुछ व्यसन होते हैं जिनकी वजह से ये रोग हो सकता है, जरूर हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो रूटीन होती है, कुछ लोग जो गर्म पेय का सेवन ज्यादा करते हैं या लिक्विड कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको पीने से भी दिक्कत हो सकती है, तो क्या ये भी वजह होती है कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर की?
0: नहीं, ऐसे कोई अभी तक हमारे पास साक्ष्य नहीं है. लेकिन कुछ ये स्टडीज भी पाई गई है जिसमें ये बताया गया कि जैसे हम लोग जो स्मोक्ड फूड खाते हैं, स्मोक्ड मीट खाते हैं, उससे कैंसर का रिस्क बढ़ता है.
1: सिमिलरली
0: जैसे सॉल्टेड

0: फिश खाते हैं उससे भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है. अदरवाइज हमारे पास कोई बहुत अच्छे साक्ष्य नहीं है जिससे इसकी पुष्टि हो. बट हाँ, ये देखा गया है कि स्मोक्ड फूड, सॉल्टेड फिश, इसका सेवन नहीं करना चाहिए.
1: जी तो डॉक्टर साहब, क्या सर्जरी के बाद नॉर्मल स्थिति होती है, मतलब खाने पीने में या बोलने में इस तरीके की कोई समस्या तो नहीं होती पेशेंट को?
0: देखिए, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन से ऑर्गन का कैंसर है. जैसे सपोज अगर किसी को जीभ का कैंसर है, तो अगर हम उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर पाते हैं तो उससे जो उनकी जो बोलने की और जो खाना खाने की जो क्षमता होती है वो तकरीबन ठीक रहती है.
1: जी,
0: तकरीबन ठीक का मतलब ये कि जो लोग उनको पहली बार मिलते हैं उनको ये मालूम नहीं चलता है कि इनकी सर्जरी हुई है. ऑब्वियसली जो घर वाले उनको तो पता चल जाता है. इसलिए हम ये बोलते हैं कि जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाओगे उससे क्या कि अर्ली स्टेज पे ट्यूमर डायग्नोज होगा, उसका ओवरऑल सर्वाइवर भी अच्छा रहेगा, प्लस जो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी रहेगी.
1: जी जी,
0: जैसे जैसे कैंसर एडवांस होता जाएगा तो उसमें जो सर्जरी है बहुत रेडिकल सर्जरी होती है, तो उससे स्पीच, स्वादो और अपीयरेंस के ऊपर भी फर्क पड़ता है.
1: जी डॉक्टर साहब, ये बीमारी ऐसी है जिसको सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है. लोगों को लगता है कि अब जीवन खतरे में है, लेकिन कोई ऐसा केस आपको याद पड़ रहा है जहां पे मरीज एकदम हिम्मत हार चुका हो लेकिन वो केस पूरी तरह से ठीक हो के मरीज घर गया हो?
0: जी, ऐसे पेशेंट्स हमारे पास काफी सारे आते हैं. जब भी किसी को कैंसर डायग्नोज होता है तो ये एक तरह का एक मेंटल ट्रॉमा होता है पेशेंट के ऊपर. और कैंसर सिर्फ एक मरीज की बीमारी नहीं है
1: जी,
0: ये बेसिकली उसकी पूरा परिवार, उसका पूरा जो फैमिली मेंबर्स, रिलेशंस है, उन सबको ये बीमारी चपेट में ले लेती है. उसका कारण ये कि सिर्फ शरीर को तंग नहीं करती है, फाइनेंशियली और मेंटली हर तरफ से ये परेशान करती है. तो हमारे पास काफी पेशेंट्स आते हैं, इसलिए हम लोग ये भी बोलते हैं कि जितना जल्दी आप किसी भी, जो भी हमने आपके लक्षण अभी गिनवाए हैं, चाहे छाले हो, आवाज का चेंज होना हो, जितना जल्दी इसको हम अपने मतलब डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे उतना जल्दी ठीक होने की बहुत अच्छी होती है. और काफी पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं, हम लोग तकरीबन जब हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में काम करते थे, वहां पढ़ते थे, तो हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते थे जिनका 25-25 साल पहले कैंसर के इलाज हुए हैं और वो अभी भी फॉलोअप में हमारे पास आ रहे हैं दिखाने, 4-5 साल में एक बार. कैंसर अगर किसी को डायग्नोज होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी ऑलमोस्ट खत्म होगी. इसका मतलब ये है कि अगर हम उनको उचित समय पर
1: जी, बिल्कुल बहुत ही सुंदर बात आपने कही है डॉक्टर साहब. यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद करेंगे आगे की चर्चा.

0: जी हाँ, श्रोताओं, मुश्किलें तो बहुत सारी आती हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, तो उससे उबर जाना ही हमारे लिए बेहतर होता है। और कैसे हम उबर सकते हैं, अगर आपको कैंसर जैसा रोग घेर रहा है तो, या आपको अंदेशा हो रहा है कि आपको हेड एंड नेक कैंसर हो सकता है, या आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे आप सजग हो जाएं, ये जानकारी हमें दे रहे हैं डॉक्टर कुलदीप ठाकुर जी, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन। तो यदि आपका भी है कोई सवाल तो हमसे संपर्क करें। स्टूडियो का नंबर है 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, हमारे पास नरदेव सिंह चौहान जी का कोट द्वार उत्तराखंड से मैसेज आया हुआ है। इन्होंने नमस्कार लिखा है कि अनुराधा मैम और डॉक्टर साहब को गुड आफ्टरनून। इनका सवाल है कि कैंसर में आर्थिक पक्ष पर परिवार को जूझना पड़ता है, तो सामाजिक संस्थाएं और सरकार की तरफ से क्या मदद मिलती है?
1: देखिए, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे, जैसे आप दिल्ली एम्स की बात करें, तो जितने भी हेड नेक कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनका जो इलाज होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है
0: जी।
1: तो सिमिलरली दूसरे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे पीजीआई है या दूसरे स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे मोस्टली कैंसर का इलाज फ्री होता है। इवन जब हिमाचल जैसी जगह जहाँ पे कैंसर का इलाज भी फ्री होता है
0: जी।
1: प्लस जो कैंसर के मरीज होते हैं उनके साथ एक अटेंडेंट है, उनको जो वहाँ की जो बस सर्विसेज है सरकार की, उस पर यात्रा करना भी फ्री रहता है, हॉस्पिटल से लेके घर तक उसका पास बनता है। तो गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स है जिसमें कैंसर पेशेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट का एक जो है ना गवर्नमेंट ने स्कीमें इख्तियार की हुई है
0: जी। तो ये जो सुविधाएं हैं उनको किस तरह से लोग ले सकते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर नंबर या कुछ आप बताना चाहेंगे?
1: ये तो जब हम किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करने जाते हैं तो हॉस्पिटल का अपना एक इंक्वायरी नंबर होता है। तो वहाँ पे आप उस नंबर पे फोन करके किसी भी हॉस्पिटल में, जैसे आप ये उत्तराखंड किया तो वहाँ पे जैसे एम्स ऋषिकेश है, तो वहाँ पे उनका फोन नंबर होता है, आप उस पे ये फोन करके जो है ना उनसे उचित कंसल्टेशन ले सकते हैं कि हम इसका फायदा कैसे उठाएं।

0: पर ऑलमोस्ट हर स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे कैंसर का फ्री इलाज होता है
1: जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारी वजहें होती हैं जो आपने बताया, एक समस्या ये भी आती है जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिनको होती है, तो क्या उनको भी नेक कैंसर होने का खतरा होता है?
0: नहीं, ये चीजें बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। हेड एंड नेक कैंसर अलग है, जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम अलग है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम मोस्टली जो नसें होती है, जब वो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलती है वो दब जाती है, तो उसके लिए आप किसी भी स्पाइन स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन ले सकते हैं, तो उसका कैंसर के साथ कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि जब भी हेड एंड नेक कैंसर में रेडिएशन देते हैं तो उन पेशेंट्स को ये सर्वाइकल की दिक्कत लेटर ऑन हो जाती है, क्योंकि जो नसें हैं वो रेडिएशन की वजह से ट्रैप हो जाती हैं। तो वो जो सूजिस वहाँ होती है रेडिएशन इंड्यूस्ड, उससे ट्रैप होती है, तो उसको न्यूरोपैथी बोलते हैं, रेडिएशन इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी, तो उसका भी इलाज संभव होता है जी।
1: हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं लाइन पर, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्कार सर, आपको भी, डॉक्टर साहब को भी।
1: जी नमस्कार, शुभ नाम बताएं आप।
2: मेरा नाम सर राजेंद्र है, एज मेरी 75 है
1: जी।
2: ये सर, ये जी, जब मैं कोई गर्म चीज, नमक मिर्ची सब लेता हूँ तो एकदम जीभ पर लग जाती है, जैसे ज्यादा गर्म भी है तो एकदम बाहर फेंकना पड़ जाता है, क्या कारण है? कई साल से हो रहा है इसे।
1: जी,
0: तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहता है कि हमें जो, क्या आप इसका स्मोकिंग करते हैं आप?
2: बहुत पहले करते थे सर, 15-16 साल पहले, अभी छोड़ दिया। मेरा हार्ट का भी एक स्टंट डला हुआ, तब से छोड़ दिया 2011 में
0: जी। और कुछ तंबाकू का सेवन तो नहीं करते?
2: कुछ नहीं, कुछ नहीं सर, अब कुछ नहीं। जैसे मिर्ची लग जाना, ये गर्म पानी लग जाना, नमक लग जाना एकदम से, कभी कभी उस पर जीभ पर दरार सी भी दिख जाती है।
0: देखिए, कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्री मैलिग्नेंट चीजें कुछ होती हैं, कैंसर से जो पहले वाली स्टेज होती है, पर्टिकुलरली जो स्मोकर्स होते हैं या जो अल्कोहलिक होते हैं, तो उनमें जो प्री मैलिग्नेंट लीजन है उनमें भी ये दिक्कत होती है। तो आपको देखने में कोई, अगर आप मुंह शीशे के सामने देखते हो तो आपको लगता तो नहीं कुछ खराबी है, कुछ सफेद दाग बने हुए या पैचेस बने हैं या कोई अल्सर बने?
2: कभी कभी छाले हो जाते, फिर ठीक से हो जाते जैसे वो, और फिर मैंने दिखाया थी ईएनटी, वो कह रहे कुछ नहीं, साफ सफाई रखो बस, ऐसे कुछ
0: कर। जी ठीक है। सो अगर कोई भी अल्सर है जो परसिस्ट कर रहा हो तब तो उसमें कैंसर का रिस्क रहता है, लेकिन जो छाले अपने आप ठीक हो जाए उसमें जनरली कैंसर का रिस्क नहीं रहता है। तो ऐसे में आप अपने नियरेस्ट जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है उनके पास जाके उचित जो भी दवाइयाँ इसमें यूज हो सकती हैं वो,
2: कोई दवाई नहीं सर, वो बोलते हैं सफाई रखो बस और कुछ नहीं।
0: ये जरूर देखा गया है कि अगर ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है उनमें भी कैंसर का रिस्क रहता है, तो ओरल हाइजीन हमें मेंटेन करना चाहिए सर
1: जी।
0: और पानी ज्यादा पिए, हाइड्रेटेड रहे, जितना पानी हो सकता है उतना पिए
1: जी। तो इनका मार्गदर्शन आपने कर दिया है डॉक्टर साहब। हमारे पास मैसेज आया हुआ है सुमन गुप्ता जी का, इनकी एज 37 ईयर है, सरिता विहार नई दिल्ली से। इन्होंने लिखा है कि इनके राइट आर्म में एक गांठ है, 4 साल से दर्द नहीं है, छोटी सी गांठ है, क्या ये कैंसर हो सकती है, ये जानना चाहती है।
0: अगर इसमें जो गांठ है उसका कोई रिसेंट ऐसे जो बिहेवियर या नेचर उसमें कोई चेंज नहीं है, तो मुझे लगता है कि बहुत अनलाइकली कि उसमें कैंसर का कोई रिस्क रहे। बट मोस्टली लाइपोमास होते हैं, जो ये फैट की जो कलेक्शन होती है वो होते हैं, जो इस तरह के शरीर में कहीं और जगह भी हो सकते हैं। बट अगर इनको लगता है कि किसी भी तरीके की उसमें थोड़ा बहुत दर्द हो रही हो या रिसेंटली कुछ साइज बढ़ गया हो, तो उनको फिर अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए
1: जी। डॉक्टर साहब, ऐसे और भी कोई सिम्टम्स होते हैं, जैसा कि इन्होंने गांठ तो एक अमूमन मान लिया जाता है कि हाँ ये कैंसर की स्थिति हो सकती है शुरुआती दौर, लेकिन क्या कोई और भी लक्षण होते हैं? जैसे मैंने सुना है कि तिल की संख्या अगर बढ़ती जा रही है तो क्या ये भी कहीं एक सिम्टम है?
0: देखिए, अगर जैसे किसी को अगर गांठ है, अगर उसमें रिसेंटली कुछ उसके बिहेवियर या नेचर में कुछ चेंज हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल गांठ 3-4 साल से अभी उनको लग रहा है कि 2-3 महीने से गांठ बढ़ रही है साइज में, या उसमें कुछ नए लक्षण आए जैसे उसमें पेन होना शुरू हो गया है, या फिर जो गांठ पहले अच्छे से हिलाने पे हिलती थी अब वो हिल नहीं रही है, या उसको हिलाने से उसमें दर्द हो रहा हो, तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसमें हमें, अगर ये सब चीजें आती है तो दैट मीन्स कैंसर का रिस्क हो सकता है, या उसमें रिसेंट मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उसका नेचर कैंसर की तरफ किया हो। तो ऐसे केसेस में जरूरी रहता है कि जो भी अपने पास के डॉक्टर हैं, जो भी हैं, उनसे जाके मिलके एक उच्च परामर्श लें। दूसरा ये रहता है कि जो आप बोल रहे हैं कि जो नंबर बढ़ जाता है या जो सन एक्सपोज एरिया में पिगमेंटेड स्पॉट्स बढ़ जाते हैं
1: जी,
0: तो स्पेशली जैसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जो ईएनटी जो स्किन कैंसर है उसका इंसिडेंस काफी ज्यादा है, तो तो अगर उन्हें लगता है कि ये पिगमेंटेड स्पॉट साइज में बढ़ रहे हैं

0: हैं
1: जी.
0: और उसमें अल्सरेशन शुरू हो गई, अल्सर बनने शुरू हो गए, छाले पड़ने शुरू हो गए हैं, तो फिर उनको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए.
1: जी डॉक्टर साहब, जो जिनका इलाज हो चुका है तो क्या उनकी ताउम्र मेडिसिन चलती है या फिर वो स्वस्थ हो चुके हैं तो जरूरत नहीं होती है उसकी?
0: नहीं, ईएनटी कैंसर में अगर हमने एक बार ट्रीटमेंट पूरा कर लिया, चाहे वो रेडिएशन हो, कीमो रेडिएशन हो, या सर्जरी किया हो, या सर्जरी के बाद कीमो रेडिएशन दिया हो, जब एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके 3 मंथ्स के बाद हम लोग रूटीनली पेट स्कैन करते हैं, ये देखने के लिए कि जो हमने ट्रीटमेंट इनको दिया है उससे पेशेंट डिजीज फ्री हो चुका है या नहीं हुआ है.
1: जी.
0: अगर वो डिजीज फ्री हो जाते हैं 3 महीने के पेट स्कैन के बाद, उसके बाद पेशेंट को हम बोलते हैं कि हर 2-3 महीने में एक बार दिखाना है.
1: जी.
0: और उसका रीजन ये रहता है कि ट्यूमर के वापस आने का रिस्क काफी ज्यादा होता है.
1: जी.
0: तो अगर हम पेशेंट को हर 2-3 महीने में देखेंगे, उससे हम एक तो जो कैंसर है उसको अगर वो वापस आता है तो उसको बहुत अर्लीस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं और इमीडिएटली ट्रीटमेंट दे सकते हैं.
1: जी.
0: अगर उसको एडवांस स्टेज पे रिकरेंस पकड़ते हैं तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको सैल्वेज करना. तो ऐसे लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है. लेकिन हाँ, ईएनटी कैंसर ट्रीटमेंट के बाद अपने डॉक्टर को हर 2-3 महीने में दिखाते हैं. जैसे पहले साल आप 2-3 महीने में दिखाएं, दूसरे साल 3-4 महीने में दिखाएं, वैसे ही 5 साल के बाद साल में एक बार दिखाएं, सो दैट जो रिकरेंस का जो रिस्क है उसको हम जल्दी पकड़ लें और उसको कम कर दें.
1: मतलब आगे भी संभावना होती है कि अगर सर्जरी एक बार हो चुकी है तो सर्जरी के बाद भी ये समस्या हो सकती है, आपका ये कहना है?
0: बिल्कुल जी.
1: जी, तो श्रोताओं बहुत सतर्क रहने की जरूरत है. अगर आपको लगता है कि आप सर्जरी करा चुके हैं तो बिल्कुल निश्चिंत ना हो जाएं. डॉक्टर साहब ने कहा है कि समय समय पर आप परामर्श लेते रहें अपने डॉक्टर से. डॉक्टर साहब, अब समस्या होती है कि जो नेक है, खाने पीने के लिए जरूरी है कि जो ऑपरेशन हो चुका है उसके बाद किस तरह की एहतियात होनी चाहिए खान पान में?
0: देखिए, जैसे हम किसी पेशेंट को ऑपरेट करते हैं, सर्जरी करते हैं, सर्जरी के माध्यम से जैसे जीभ का ऑपरेशन करते हैं, नई जीभ बनाते हैं, या मुंह में कोई और एरिया होता है जिसको हम रिसेक्ट करते हैं, उसको वैसे उसी सेम तरीके की उससे जो है ना मैं रिप्लेस करना है, कोई फ्लैप लगाना है, तो उसके बाद हमें पेशेंट को बेसिकली रिहेबिलिटेट करना होता है कि अगर नई जीभ बनी उस नई जीभ से काम कैसे करवाएं. सो एक रिहेबिलिटेशन होता है. तो जब भी सर्जरी करते हैं, सर्जरी के बाद हम रिहेबिलिटेट करते हैं सो दैट पेशेंट नॉर्मल लाइफ जिए. वैसे ही जब हम रेडिएशन देते हैं, रेडिएशन के बाद भी हम कुछ स्वालो एक्सरसाइजेस देते हैं पेशेंट को
1: जी.
0: जिससे कि क्योंकि रेडिएशन से भी काफी डैमेज होता है नेक में,
1: सो
0: उसको अगर हम प्रॉपर तरीके से उसको स्वालो रिहेबिलिटेशन करते हैं तो उसको हम नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जा सकते हैं.
1: जी डॉक्टर साहब, एक चीज और देखने में आती है कि जो सर के बाल होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, तो कैसे, मतलब ये किस वजह से होता है और किस तरह से प्रॉपर तरीके से फिर से इंसान जीवन में लौट सके, कैसे क्या किया जाए?
0: मोस्टली जो हेयर लॉस होता है वो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट से जाता है. और जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो कीमोथेरेपी इंड्यूस जो एलोपेशिया है वो धीरे धीरे करके बाल वापस आ जाते हैं. तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है. जो फेस के बाल होते हैं, दाढ़ियां जिसको हम बोलते हैं, वो भी रेडिएशन के दौरान चले जाते हैं. बट हमें ये देखा गया है कि तकरीबन 1.5 साल से 2 साल के बीच में उनके जो बाल है वो वापस आ जाते हैं.
1: इसमें
0: कोई घबराने की जरूरत नहीं है.
1: जी
0: बिल्कुल.
1: तो ये इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वैज्ञानिक इतनी तरक्की कर चुका है. तो हम अपने श्रोताओं को यही जो है जागरूक कर रहे हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और लगातार रेडियो डॉक्टर आपको सलाह देता रहता है और आपको परामर्श देता है कि किस तरह से आप स्वस्थ हो सकते हैं और आपका आगे का जीवन कैसे स्वस्थ रह के गुजर सकता है खुशी से. तो डॉक्टर साहब, समय बहुत कम है और चलते चलते आप और क्या कहना चाहेंगे कि ताकि इस स्थिति तक इंसान पहुंचे ही ना?
0: जी, सबसे पहले तो क्योंकि मेजोरिटी जो ईएनटी कैंसर है वो तंबाकू से होते हैं, जिसमें तंबाकू चबाना या फिर स्मोकिंग और अल्कोहल, तो इस चीज को अपनी जिंदगी से त्याग दें. इसके साथ ही अगर इस तरीके के लक्षण जैसे मुंह में छाला जो 2 वीक से ठीक नहीं हो रहा है, चेंज इन वॉइस है, या कोई लंप है, पेनलेस लंप है जो 2 वीक से ठीक नहीं हो रहा है, या नाक बंद है उससे खून आ रहा है, तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने डॉक्टर्स को इमीडिएटली दिखाना चाहिए. इमीडिएटली दिखाना चाहिए कि पेशेंट की जो कैंसर है वो अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाता है और उसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छे से होता है, लेस इनवेसिव प्रोसीजर्स होते हैं, तो आउटकम जो होती है वो बहुत अच्छी रहती है. और सेकेंडली, आजकल काफी सारे पेशेंट मुझे पूछते हैं कि कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. तो उसके 2 रीजन है, एक तो ये कि हमारा जो डिटेक्शन रेट है वो बहुत अच्छा हो गया है, और सेकेंडली काफी सारे लोग जो एडिक्शन हैबिट्स हैं, पान पान पराग या तंबाकू का जो सेवन

0: करते हैं वो बहुत ज्यादा लोग सेवन करते हैं जो कि ज्यादा वल्नरेबल होते हैं कैंसर के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है प्रिवेंशन के लिए कि लाइफ स्टाइल हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं जिसमें आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं, लीफी वेजिटेबल्स खाएं, हाइड्रेटेड रहें, ठीक है जी। सो अगर इन सब चीजों का हम अपनी जिंदगी में अमल करते हैं इन सब चीजों के ऊपर तो कैंसर से काफी हद तक बचा जा सकता है
1: जी, यानी उस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे जिसके लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो श्रोताओं, आज हमने चर्चा की, आज है वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे, तो आज हमने बहुत ही विशेष चर्चा की है। हमारे आज के विशेषज्ञ रहे डॉक्टर कुलदीप ठाकुर जी, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन। तो उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब, चलते चलते आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। तो श्रोताओं, उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी किसी विषय पर डॉक्टरी परामर्श लेना, तो अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। तो लगातार हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए और अपने सुझाव, प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। उसके लिए नंबर्स लगातार हम आपको बताते रहते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम से अब अनुराधा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की दिल्ली केंद्र से लीजिए प्रस्तुत है 4 बजे के मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी 5:15 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकानी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस बल के अत्यधिक प्रयोग के आरोप में याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। न्यायालय ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। अमेरिका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। भारत हेपेटाइटिस से निपटने के लिए व्यवस्थित रूप से प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य 2030 तक इस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करना है। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 आज नई दिल्ली में शुरू हो गई है। कनाडा के ओंटारियो में आयोजित स्क्वैश विश्व जूनियर टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने ब्राजील और नीदरलैंड को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हंगाचो में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से प्रोग्राम अल्फा जेन। जी हाँ, आज मंडे है, यूथ स्पीक सेगमेंट लेकर मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरेश सृजन, और मेरे साथ हैं स्टूडियो में, पहले विषय बता देती हूँ, बात करेंगे आज बुक्स इन द डिजिटल एज, व्हाई रीडिंग स्टिल मैटर्स इन 2026। जहाँ कितनी जरूरी बात है कि किताबों को तो हमने दरकिनार कर दिया है और मोबाइल की स्क्रीन को अपनी आंखों के सामने चिपका लिया है, पर कितना जरूरी है कि 2026 में भी इस दूरी को कम किया जाए, किताबों से एक बार फिर हमारा जुड़ाव हो। डिजिटल एज होते हुए भी हमें किताबों से प्यार को कम नहीं होने देना है। क्या सोचती हैं इस बारे में हमारी गेस्ट, मिलते हैं आकांक्षा से। आकांक्षा, स्वागत है स्टूडियो में।
1: थैंक यू मैम।
0: आकांक्षा, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताओ, और ये जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया है, और मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा है।
1: तो मैम, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ, और बुक्स पढ़ने में मेरी रुचि बहुत टाइम से है।
0: ठीक है,
1: तो मुझे लगता है कि और लोगों को भी इस जो टर्म है जेन जी, तो हमें लगता है कि हम सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड में ज्यादा जा रहे हैं और बुक्स, जो ओरिजिनल बुक्स, मतलब बुक्स पेपर बुक, उनमें कम रुचि लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें बुक्स को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही हमारी ट्रेडिशनलिटी को आगे बढ़ाते हैं।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा। किताबों को जब भी खोले तो वो सौंधी सी खुशबू और वो जो बातें उसमें लिखी हैं, वो कहीं ना कहीं दिल में उतर जाती हैं, दिल में घर कर जाती हैं। तो ये सारी बातें अब हम आकांक्षा से सुनते हैं। आकांक्षा के विचार आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं अल्फा जेन यूथ स्पीक, आकांक्षा के से सुनते हैं।
1: ये 2026 का दौर है, यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ईमेल्स लिख रहा है, चैटबॉट्स हमारे सवालों के जवाब दे रहा है, एक मिनट में हम 50 रील्स देख लेते हैं, ब्रेकिंग न्यूज हर 10 मिनट में बदल जाती है। लेकिन एक सवाल है, इन्फॉर्मेशन तो बदल रही है, पर क्या हम नॉलेज भी गेन कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम पढ़ना छोड़ रहे हैं? आज हम बात करेंगे रीडिंग की पावर की, बुक्स के मैजिक की, और एआई के ज़माने में भी बुक्स की इम्पोर्टेंस की, जो लोगों को लगता है कि कम हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, ऑफिस से घर जा रहे हैं, या सिर्फ चाय लेकर रिलैक्स कर रहे हैं, तो अगले कुछ मिनट्स सिर्फ हमारे साथ।
0: बिल्कुल,
1: चलिए आज एक नई किताब का पहला पन्ना खोलते हैं। तो पहला सॉन्ग, इस पहले सॉन्ग के साथ शुरू करते हैं।

श्रोताओं, एक जरूरी सूचना की तरफ ध्यान दें। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती एक 6 साल के बच्चे को अति शीघ्र ब्लड की आवश्यकता है।

0: बच्चे को ल्यूकेमिया अर्थात ब्लड कैंसर है और इस बच्चे को ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों, रक्तदान करने में सक्षम हों, कृपया इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 9635442662। संपर्क करने के लिए नंबर एक बार फिर सुन ले 9635442662। आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: इस एनर्जेटिक सॉन्ग के साथ मेरा अगला सवाल है, किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए होती हैं क्या? बचपन में हम चंपक, नंदन, पंचतंत्र, अकबर, बीरबल सिर्फ एक स्टोरी समझकर पढ़ते थे, लेकिन आज साइंस कहती है कि यही स्टोरीज हमारी मॉरेलिटी को शेप करती हैं। रिसर्च बताती है कि रेगुलर रीडर्स की मेमोरी इम्प्रूव होती है, स्ट्रेस कम होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है और इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होता है। लेकिन मुझे लगता है बुक्स की सबसे बड़ी पावर कुछ और है। जब आप एक किताब खोलते हैं, आप सिर्फ पढ़ते नहीं, उसे जीते हैं। एक दिन आप एस्ट्रोनॉट बनते हैं, दूसरे दिन फ्रीडम फाइटर, कभी डिटेक्टिव, कभी एंटरप्रेन्योर, कभी सोल्जर, तो कभी खुद को ही दोबारा डिस्कवर करने लगते हैं। स्क्रीन आपको बताती है क्या हुआ, बुक सिखाती है क्यों हुआ और इससे हमें क्या सीखने को मिला। इसीलिए बुक सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करती, ट्रांसफॉर्म करती है। स्टीफन किंग का एक कोट है, बुक्स आर यूनिकली पोर्टेबल मैजिक, और सच ही तो है। इससे बेहतर डेफिनेशन बुक्स की कुछ और हो ही नहीं सकती। तो आइए हमारा अगला सॉन्ग सुनते हैं।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरिस रजन और आज है हमारे साथ यूथ गेस्ट आकांक्षा। बातें सुनेंगे उनकी, क्या कहती हैं उनके विचार किताबों के बारे में। किताबें खुद चुप रहती हैं लेकिन जिसने इन्हें पढ़ लिया उसे ये जरूर बोलना सिखा देती हैं। तो आप भी अपनी रीडिंग हैबिट्स को यानी अपनी बुक्स के साथ नजदीकियों को यूं ही बढ़ाकर रखिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद एक बार फिर आकांक्षा के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहिए रेनबो।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: आप सुन रहे हैं FM रेनबो पे अल्फा यूथ स्पीक और मैं हूं आकांक्षा, आपकी आज की गेस्ट। तो आज हम बात कर रहे थे बुक्स की, उन्हें ही हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो लास्ट सॉन्ग था ख्वाबों के परिंदे, वो हमें ये बताता है कि कैसे हमारी इमेजिनेशन और हमारी सोच हमें किताबों के साथ ख्वाबों की तरह ही आगे बढ़ाती है। हम सपने देखते हैं उन्हें पढ़कर, और हमारी इमेजिनेशन और आगे बढ़ती है। तो चलिए एक ऑनेस्ट गेम खेलते हैं। मैं 3 सवाल पूछूंगी, आप अपने दिल पे हाथ रख कर जवाब दीजिएगा। कब आखिरी बार आपने अपने फ़ोन का लॉक खोला था? कितनी बार आपने रील देखी थी और आपने कितने पेज पढ़े थे? शायद तीसरा जवाब आपको अनकम्फर्टेबल करे। हमारी दुनिया में नोटिफिकेशन बहुत सारी हैं। नोटिफिकेशंस के साथ हम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, AI, ईमेल्स, ब्रेकिंग न्यूज़ हर सेकंड बदलते हुए पढ़ रहे हैं, और हमारी अटेंशन हमेशा उनकी तरफ ही रहती है। इसी सवाल को एक्सपर्ट्स ने जब एनालाइज किया तो पाया कि ये हमें एक ऐसे टर्म की तरफ ले जाता है जो है डीप रीडिंग। डीप रीडिंग मतलब सिर्फ वर्ड्स को पढ़ना नहीं, उन्हें महसूस करना, समझना, क्वेश्चन करना और अपनी लाइफ में उसे कनेक्ट करना। रिसर्च ये भी बताता है कि लोग रेगुलरली लॉन्ग फॉर्म रीड करते हैं, उनका फोकस एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, डिसीजन मेकिंग वो ज़्यादा जल्दी कर पाते हैं, और एनालिटिकल थिंकिंग जनरली स्ट्रांग होती है। फ्यूचर सिर्फ AI का नहीं है, फ्यूचर उन लोगों का है जो इन्फॉर्मेशन को समझ सकें, और अंडरस्टैंडिंग किताबों से आती है। तो एक फन फैक्ट की बात करते हैं। एक एवरेज सोशल मीडिया यूज़र रोज़ कई घंटे स्क्रॉल करता है, लेकिन उसे उससे कुछ गेन नहीं होता। अगर उसमें से हम 20 मिनट भी रीडिंग को दें तो एक साल में हम बिल्कुल अलग इंसान बन सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना अगला गाना सुनते हैं।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप श्रोताओं, एक जरूरी सूचना की तरफ ध्यान दें। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती एक 6 साल के बच्चे को अति शीघ्र ब्लड की आवश्यकता है। बच्चे को ल्यूकेमिया अर्थात ब्लड कैंसर है और इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों, रक्तदान करने में सक्षम हों, कृपया इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कृपया करें। नंबर है 9635442662। संपर्क करने के लिए नंबर एक बार दोबारा सुन ले 9635442662। आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। न्यूज ऑन एयर ऐप और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे अन्य कई माध्यमों से भी हमारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम है अल्फा जेन और हमारे साथ हैं हमारी यूथ स्पीकर आकांक्षा, जो बात कर रही हैं बुक्स इन द डिजिटल एज, वाई रीडिंग स्टिल मैटर्स इन 2026। तो बात बिल्कुल क्लियर है, किताबों से प्यार तो बनता है। सुनते हैं आकांक्षा क्या कहती है।
2: तो जो अभी हमने गाना सुना सफ़रनामा, वो भी हमारी बुक्स से ही रिलेटेड है, क्योंकि सफ़रनामा की तरह जैसे हम सफ़र में निकल जाते हैं, बुक्स पढ़ के भी हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ हमें लर्निंग, क्रिएटिविटी, नॉलेज, अलग अलग तरह के लोगों की माइंडसेट सब देखने को मिलता है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक छोटा सा गाँव था, उसमें एक लड़का रहता था। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, ना एक्सपेंसिव कोचिंग, बस एक लाइब्रेरी और उसमें भी पुरानी किताबें। रोज स्कूल के बाद वो वहाँ पर पढ़ने जाता था, कभी साइंस पढ़ता, कभी हिस्ट्री। सालों साल बीत गए, आज वो एक साइंटिस्ट है। ऐसी हजारों कहानियाँ हैं हमारे पास। इन्हीं कहानियों से इंस्पायर होकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी कहते हैं बुक्स हमारी साइलेंट मेंटर्स होती हैं। उन्होंने कहा है, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। रीडिंग सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होती, रीडिंग माइंडसेट बदलती है, और जब माइंडसेट बदलता है तब फ्यूचर भी बदलता है। तो आइए हमारा अगला सॉन्ग सुनते हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6। प्रोग्राम है अल्फा जैन और मैं हूं आकांक्षा, आपकी आज की होस्ट। तो आज हम इस टाइम हम इस फैक्ट के साथ शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग इज अ सुपर पावर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेजेस, प्लेसमेंट्स, इंटरव्यूज, कॉरपोरेट जॉब्स, स्टार्टअप्स, हर जगह एक चीज कॉमन है, कम्युनिकेशन। रीडिंग से वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है, राइटिंग भी इम्प्रूव होती है, इंटरव्यू आंसर्स पावरफुल बनते हैं, पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव होती है और कॉन्फिडेंस तो नेचुरली बन ही जाता है। कंपनीज आज सिर्फ CGPA नहीं देखती, उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें।

0: आइडिया एक्सप्लेन कर सकें और लॉजिकली सोच सकें। ये सब एक हैबिट से डेवलप होता है एंड दैट इज रीडिंग। रीडिंग हैबिट बिल्ड करना इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं रीडिंग के हैबिट को शुरू करना, तो आइए कुछ स्टेप्स में इन्हें बांट लेते हैं। स्टेप 1, रोज सिर्फ 10 मिनट बस। स्टेप 2, अपनी पसंदीदा बुक पढ़िए, कंपल्शन नहीं, क्यूरियोसिटी के साथ। स्टेप 3, रीडिंग के वक्त नोटिफिकेशन बंद रखिए और फोन को खुद से दूर रखिए। स्टेप 4, एक कोजी रीडिंग कॉर्नर बनाइए। स्टेप 5, जो सीखा उसे लिखिए, एक नोटबुक रखिए या फोन में नोट्स बनाइए। रीडिंग की पावर एक सुपर पावर बन सकती है जब वो रिफ्लेक्शन में बदल जाती है। और याद रखिए, रीडिंग रेस नहीं, रीडिंग एक जर्नी है जो हर पेज आपको हर पल एक बेटर बनने के लिए मोटिवेट करता है। सिर्फ 20 पेजेस रोज, एक साल में 7000 पेजेस और लगभग 20 से 25 बुक्स। सोचिए सिर्फ एक साल में कितनी नई टीचर्स, कितनी नई जर्नीज और कितनी जिंदगियां। आइए अपने अगले सॉन्ग को सुनते हैं।
1: क्या खूब कहा आकांक्षा तुमने, और बिल्कुल अगर आप आकांक्षा के आंकड़ों के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो आप इतनी किताबें यकीनन पढ़ सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, किताबों में इतना खजाना छुपा है जितना कोई लुटेरा कभी लूट नहीं सकता। तो पढ़िए, खूब पढ़िए और अपने आप को हमेशा आगे रखने के लिए जो है मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। तो हम चलते हैं लक्ष्य की ओर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आकाशवाणी FM रेनबो सुन रहे हैं श्रोताओं, एक जरूरी सूचना की तरफ ध्यान दें। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती एक 6 साल के बच्चे को अति शीघ्र ब्लड की आवश्यकता है। बच्चे को ल्यूकेमिया अर्थात ब्लड कैंसर है। इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। इच्छुक रक्तदान कर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हो और रक्तदान करने में सक्षम हो, कृपया मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 9635442662। संपर्क करने के लिए नंबर एक बार फिर सुन लें, 9635442662। आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है। आकाशवाणी FM रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम है अल्फा जेन और हमारे साथ है हमारी यूथ स्पीकर आकांक्षा। कितनी अच्छी बात आकांक्षा से हमें जानने को सुनने को मिली है कि किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। कहते हैं ना, बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले पढ़ो। तो चलते हैं आकांक्षा की बातों पर, उन बातों पर जिनसे हमें बहुत जरूरी अपने लाइफ के लिए लर्निंग्स भी मिल रही हैं। तो आकांक्षा, क्या कहना चाहेंगी आप?
4: एक वक्त था जब हम किताबों की खुशबू के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। नई किताबें देखकर मार्केट में जाते ही स्टेशनरी शॉप पे अटक जाते थे कि हमें यही चाहिए। लेकिन आज हाथ में फ़ोन है, नोटिफिकेशन का शोर है और हज़ारों काम हमारे फ़ोन पर ही हो जाते हैं या फिर डिजिटल स्क्रीन्स पर। हम ऐसी स्पीड में जा चुके हैं कि हम जब रुकते भी हैं तो किताबों को देखकर हमें लगता है कि हम डिजिटल बुक्स पढ़ लेंगे, पीडीएफ पढ़ लेंगे या फिर ई बुक्स की तरफ ज़्यादा हमारा ध्यान जा चुका है। सोचिए, हमने एक ऐसी दुनिया बना ली है जिसका जवाब सिर्फ क्लिक्स पर मिलता है। गूगल है, चैट जीपीटी है और एआई है, सब कुछ इंस्टेंट है। पर क्या इस इंस्टेंट नोटिफिकेशंस के ज़माने में हमने अपने आप के ठहराव को छीन लिया है जो कि हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है? आज की इस फास्ट पीस दुनिया में जहाँ हर सेकेंड एक नया ऐप लॉन्च हो जाता है और हर नोटिफिकेशन हमें ये भटका देती है हमारी एकाग्रता को कि हम कुछ सोच कुछ और रहे होते हैं और कहीं किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं एक क्लिक पर। तो जब हम अपने फोकस को खो देते हैं तो उसे वापस लाना हमारे लिए एक करेंसी बन गया है। हम स्पीड के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हमने खुद की सोच को आगे बढ़ाना छोड़ दिया है और अपना दिमाग बंद करके बैठ जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या इन्फॉर्मेशन और विजडम में कोई फ़र्क होता है? इन्फॉर्मेशन आपको एक सेकेंड में मिल जाती है, पर समझ, पर्सपेक्टिव, वो सिर्फ गहराई से आता है और गहराई हमें हमेशा पन्ने पलट कर ही मिलती है। तो आइए हमारे अगले सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6। प्रोग्राम है अल्फा जैन और मैं हूं आकांक्षा, आज की स्पीकर। तो हम बात कर रहे थे डिजिटल एज में बुक्स पढ़ने की। तो टेक्नोलॉजी और स्मार्ट होगी, एआई और इंटेलिजेंट होगा, रोबोट्स और कैपेबल होंगे, लेकिन एक क्वालिटी जो कभी आउटडेटेड नहीं होगी और वो है सीखने की भूख। बुक्स हमें आंसर देती हैं, बुक्स हमें सिर्फ आंसर ही नहीं समझाती, वो हमें बताती हैं कि हम बेटर क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं और हमारे पेशेंस को भी और इम्प्रूव करती हैं। एम्पथी सिखाती है हमें, प्रस्पेक्टिव देती हैं और शायद खुद से मिलना भी सिखाती है। तो आज एक प्रॉमिस कीजिए, आप रोज एक बुक तो जरूर पढ़ेंगे, चाहे कुछ पेजेस ही पढ़ें, चाहे 10 मिनट से शुरुआत करें, लेकिन बुक्स जरूर पढ़िए। आज एक किताब हमारे नाम पढ़िए। हो सकता है उसके लिए आपको आज एक पेज लगे, कल 2 पेज, लेकिन धीरे धीरे करके आप एक साल में कुछ अलग ही इंसान बन जाएंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। आपको अपनी लाइफ में एक न्यू आइडिया भी मिल सकता है इससे, क्योंकि हर बुक एक न्यू मॉरलिटी हमें सिखाती है और एक न्यू पर्सपेक्टिव देती है। तो मैं हूँ आकांक्षा, आपसे इजाजत लेती हूँ इसी एक खूबसूरत कोट के साथ। A reader lives 1,000 lives before he die. The man who never reads lives only one. खुश रहिए, curious रहिए और सीखते रहिए और किताबों का साथ कभी मत छोड़िए। नमस्कार।
1: बहुत खूब कहा आकांक्षा, और आज का ये सफर आपके साथ कब निकल गया पता ही नहीं चला। और किताबें भी तो यही करती हैं, हमें वो सफर कराती हैं जो हम कदमों से नहीं कर सकते। कदमों से कभी मुमकिन नहीं होता कि इतना लंबा चौड़ा हम चल दें या फिर पहुंच जाए कहीं तक, लेकिन जब हम किताबों के जरिए कहीं से कहीं अपनी सोच को ले जाते हैं तो यकीनन पहुंच जाते हैं। आप भी इस बात को मानते हैं ना? तो आकांक्षा, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर, आपके विचारों को सुनकर, और आपने किताबों के बारे में हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को जो भी कहा, आई एम श्योर वो इस बात को समझेंगे और प्रयास करेंगे कि आज से नहीं, अभी से शुरुआत करें और एक पन्ना रोज पढ़ें। तो चलिए, आकांक्षा ने यहां हमसे टाटा बाय बाय कह दिए, लेकिन आपका और हमारा सफर यूं ही जारी रहेगा। अगला प्रोग्राम आप सुनेंगे सैटेलाइट्स 5:02 पर रेशमा फारूकी के साथ, और उसके बाद 6:02 पर नीरजा चतुर्वेदी लेकर आएंगे आपके लिए प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम कंट्री कार्निवल लेकर मुक्ता आएंगी 7:02 पर, और एक बार फिर म्यूजिक और मस्ती नीरजा के साथ कीजिएगा 8:02 पर, और 9:02 पर न्यूज के बाद आपकी याद आती रही लेकर ताहिर हसन आएंगे, और वेस्टर्न म्यूजिक एक और रेनबो शोकेस प्रोग्राम लेकर मुक्ता जुड़ेंगी आपके साथ 10:02 पर। तो ताहिर के साथ रंगे महफिल सजाना मत भूलिएगा, 11:02 पर ताहिर आएंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से, और जी आपको इसे सुनते रहना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इन्फोटेनमेंट है, यानी इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों है। तो तब तक के लिए अपनी दोस्त रजन को दीजिए अनुमति, यूं ही सुनते रहिए, अपनों और अपनों का रखिए बहुत बहुत ख्याल। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
0: श्री बिरला ने सदस्यों से सहयोग और सार्थक चर्चा की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच उन्होंने सदन को शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
2: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त दान राशि के गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने एसआईटी को जांच के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इंकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितम्बर को निर्धारित की है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचू में आयोजित आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु ने कांस्य पदक जीता। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Lok Sabha was adjourned till 5 p.m. amid opposition protests over alleged police action against students during the protest on the NEET issue. Earlier, the House was adjourned several times amid repeated disruptions as Minister of State Dr. Jitendra Singh introduced the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill proposes stricter penalties including imprisonment of up to 10 years, fines up to 10 crore rupees, confiscation of properties of convicted offenders, special fast-track courts, completion of investigations within 2 months and trials within 3 months of filing the charge sheet. Speaker Om Birla and Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged members to allow discussion on the bill, saying 6 hours had been allotted and 91 amendments had been received.

0: মুড়ি অনাদি মিলন সরানো
1: কত কাল ধুমুহাই সুখ

0: ইমানপুৰ শ্ৰোতাসকলে ভজনৰ অনুষ্ঠানটি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া খন্তেক পিছতে অৰ্থাৎ 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা 9:00
1: भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
3: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
4: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मींस तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस, कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
3: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमारफी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, यह अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की पहली तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इजराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
5: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स